करते वक्त कुछ गुलाब के पंखुड़ियों का इस्तेमाल इसकी चंद मिसालें हैं। आखिर में हम ये भी वाजह करते चले कि तुर्की में गुलाबी बाहर खोदने फूल नहीं, कद्दू के फूल, मोतिया, मुनक्शा, गुले दाऊदी, डेंटलिन और अनार के फूल भी मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ताम हर फूल खाने के काबिल नहीं होता, ऐसे फूलों से इतना बरतना जरूरी है जिनको माहरीन तजवीज़ नहीं करते या जिनके बारे में मतलूबा सतह की मालूमात मौजूद नहीं होती। जब आप अगली बार गुलाब को सूंघेंगे तो आप इसे महज एक फूल के तौर पर नहीं बल्कि जायका शफा के हजारों साल पुरानी रीत की निगाह से भी जरूर देखेंगे। समाप्त करने का शुक्रिया। आइंदा की पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।

0: सरकारी नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इसराइली तैयारों ने अली अल ताहिर की पहाड़ियों नबतिया अल फौका के शुमाली मज़ाफात और ज़ाहिया कफर रमान के करीब अल दबशा के इर्द गिर्द के इलाकों को निशाना बनाया। एजेंसी के मुताबिक इन इलाकों पर तुलू आफ्ताब तक वक्तन फवक्तन इसराइली तोपखाने से गोलाबारी भी की गई। मजीद बरान नेशनल न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि इसराइली फौज ने बुध की रात और जुमेरात की अल सुबह मजदल जोन और अल मंसूरी के कस्बों पर भी हमले किए, जहां दोनों इलाकों को तोपखाने के जरिए निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद होने वाले जानी या माली नुकसान के बारे में फिलहाल कोई मालूम सामने नहीं आई हैं। यह ताज़ा तरीन हमले इसराइल और लुबनान के दरमियान जारी उन झड़पों के दौरान हुए हैं जो 2 मार्च को लुबनान के खिलाफ इसराइल की बड़े पैमाने पर जारहियत के आगाज़ के बाद से जारी हैं।
1: इसराइली फौज ने पहली बार गजा में 5 साल हिंद रजब के कत्ल का एतराफ़ किया और इसके कत्ल की तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल ने बुध के रोज़ ऐलान किया है कि वो 29 जनवरी 2024 को हिंद रजब और मार्च 2025 में गजा में अपने फौजियों के हाथों 15 इंसानी इमदादी कारकुनों के कत्ल की तहकीकात शुरू करेगा। इसराइल ने इससे कबल इन हलाकतों में मुलव्वस होने से इनकार किया था और महीनों बाद अपने इब्तदाई तहकीकात में कहा था कि इसकी अफवाज गाड़ी के करीब या फायरिंग की हद में मौजूद नहीं थी। हिंद रजब शुमाली गजा में एक गाड़ी में सफर करने वाले खानदान के साथ अराकीन में से एक थी जिस पर फायरिंग की गई। पहले हमले में जिंदा बच जाने वाली रजब ने कई घंटों तक फोन पर फलस्तीन हलाले अहमर के पैरामेडिक्स से मदद की अपील की, जबकि इसे बचाने के लिए भेजी गई एम्बुलेंस पर भी फायरिंग की गई। फलस्तीन हलाले अहमर के साथ एक मायूसकुन और घंटों तवील फोन कॉल पर आखिरी बार रब्ता होने के 12 दिन बाद रजब की बेजान लाश गोलियों से छलनी एक गाड़ी से मिली। पैरामेडिक्स के साथ रजब की फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग ने बैन अल-अक़वामी सतह पर शदीद गम व गुस्से को जन्म दिया और इसकी मौत और गजा में हलाक होने वाले हजारों दीगर बच्चों के एहतसाब के मुतालबात को तकवीत दी। इस वाकये से मुतासर होकर बनाई गई फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब को 2026 में ऑस्कर के लिए नामजद किया गया।
2: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक बयान में ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान इंतजामिया ने उन्हें पेश किए गए माहदे के मौके को गंवा दिया है। उन्होंने इला अल्फाज का इस्तेमाल किया कि मैं किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक के सबसे ज्यादा तबाहकुन माशी ऑपरेशन का ऐलान कर रहा हूँ। अपने बयान में ईरानी मईशत और अस्करी ताकत को शदीद धचका लगने का दिफा करते हुए ट्रंप ने कहा कि तेल की स्मगलिंग, कैश ट्रांसफर्स और जाली कंपनियों समेत तमाम मालियाती जराए को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर ने यह इंतबाह भी किया कि कोई भी ऐसा मुल्क जो ईरान को सहारा देगा या उसके साथ तजारत जारी रखेगा उसे भी शदीद मुआशी नतायज का सामना करना होगा।
1: अमरीका ने ईरान के खिलाफ शुरू की जाने वाली जंग में अब तक जख्मी होने वाले अपने फौजियों की तादाद की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी हैं। अमरीका वजारत दिफा पेंटागन ने अपने डेटाबेस को अपडेट करते हुए जख्मी फौजियों की फहरिस्त में 50 से जायद नए नामों का इजाफा किया है। इस तरह 28 फरवरी से जारी इस जंग में जख्मी होने वाले अमरीकी फौजियों की कुल तादाद बढ़कर 757 हो गई है। दूसरी जानब ईरान के साथ जंग में हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद की भी तजदीद की गई है जो अब 18 हो चुकी है। इससे कबल डेटाबेस में गायब होने वाले रिकॉर्ड ने काफ़ी तवज्जो हासिल की थी। गुज़श्ता माह सिस्टम से हटाए गए 4 हलाकतों और दर्जनों जख्मियों के रिकॉर्ड को दोबारा शामिल किए जाने पर तनकीद के जवाब में पेंटागन ने सूरत हाल को तकनीकी खराबी करार दिया है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सफारती मुज़ाकरात इस वक्त तआतुर का शिकार हैं, ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की मुअत्तली और आबनाए हुरमस में कशीदगी बरकरार रहने के बावजूद ये दावा किया है कि ये अमल बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है।
0: अमरीका का सरकारी कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज कर गया। अमरीकी वजारत खजाना के आदाद व शुमार के मुताबिक अमरीकी हुकूमत का कर्ज पहली मरतबा 40 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज कर गया है। इस इजाफे से मुल्क के माली मुस्तकबिल के बारे में तशवीश में इजाफा हुआ है। सरकारी कर्ज 40.47 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है जो एक दिहाई से भी कम अरसा कबल के मुकाबले में 2 गुना से ज्यादा इजाफा है। वाज़ रहेगा कोविड-19 वबा के दौरान अमेरिका में कर्ज लेने की रफ्तार में तेज़ी से इजाफा हुआ है। मुसलसल अखराजात, आमदनी और अखराजात के दरमियान अदम तवाजुन और बढ़ते हुए सूदी अखराजात वफाकी मालियात पर दबाव बरकरार रखे हुए हैं।
1: ईरान ने खलीजी ममालिक को अमरीका की मदद से परहेज करने की तंबीह की है। ईरान मुसलह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र खलीजी ममालिक को खबरदार किया है कि वो अमरीकी अफवाज की मदद से बास रहें। उन्होंने कहा है कि अमरीकी फौज को

सामिन, अगरचे ये बात काबिल बहस है कि वो हमारे ज़िंदगी को कितना आसान बना देते हैं, लेकिन ये जानकर हैरानी हो सकती है कि आलू के चिप्स, जो कि दुनिया के फूड कल्चर में बहुत ख़ास मकाम रखते हैं, इतफाक़ी तौर पर एक बावर्ची को गुस्से के एक लम्हे में दरियाफ्त किया गया था। लेकिन यह सच्चाई वो नुक्ता है, और वो ये है कि आलू के चिप्स जो पहली बार 1853 में दरियाफ्त हुए थे, कई सालों तक 5 स्टार होटलों या बड़े क्रूज़ बहरी जहाज़ों के रेस्तरानों में चांदी की परात पर नफासत के साथ पेश किए जाते रहे थे। जब बात अमेरिका में इजादात की हो तो यह सेहरा आम तौर पर उन नामों को दिया जाता है जैसे ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन ईजाद किया, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज़ ईजाद किया, निकोला टेस्ला या थॉमस एडिसन, जिन्होंने बिजली और रेडियो नशरियात पर काम किया। ताहम शायद इस फहरिस्त में आधे हिंदुस्तानी और आधे सियाह फाम जॉर्ज क्रुम का शामिल करना ज़रूरी है, जिसे अमरीकन हेरिटेज मैगजीन ने 1976 में एडिसन ऑफ लिब्रिकेशन का नाम दिया था, क्योंकि क्रम के मुजज़ाती चिप्स को इत्तेफाक से दरियाफ्त होने के दिन से अब तक अरबों बार इस्तेमाल किया जा चुका है। सन 1853 में मशहूर शेफ जॉर्ज क्रम, जो न्यूयॉर्क के शहर साराटोगा में मॉन्स लीक हाउस नामी रेस्तरां में काम करता था, उसने अपने गोश्त की डिश के साथ फ्रेंच फ्राइज पेश किए, जिसे एक अमीर गाहक ने नापसंद किया जो कि जहाज़रानी और रेलवे के कारोबार में मसरूफ़ था। गाहक खाने की प्लेट बावर्ची खाने में वापस करता है और आलू को बारीक काट कर तलने के लिए कहता है। क्रम ने इस दरख्वास्त को रद्द नहीं किया और एक नई प्लेट तैयार की, लेकिन गाहक चाहता था कि फ्राइज उससे भी ज़्यादा पतले हों कि उन्हें कांटे से पकड़ा ना जाए। जॉर्ज क्रम, जो कि अमीर गाहक ने दूसरी बार प्लेट वापस भेजकर उसे अपनी तोहीन के तौर पर देखा, तो बहुत गुस्से में आया। इस बार पूरी महारत का मुजाहरा करते हुए नमक और मुख्तलिफ मसाले डालकर आलू के टुकड़े तकरीबन कागज़ के पतले से काट कर फ्राई करके गाहक को पेश किए। अमीर गाहक कॉर्नीलियस वंडरबेल्ट क्रम के पतले और खस्ता फ्राई से बहुत मुतासर हुआ और उसने अपने हल्के में सबको उनकी सिफारिश की। इस वाक़े के बाद हर कोई क्रम से वही फ्रेंच फ्राइज मांगने लगता है और आलू के चिप्स अचानक रेस्तरां का पसंदीदा खाना बन जाते हैं। अगरचे कुछ अरसे बाद घरेलू ख्वातीन की तरफ से इसी तरह के फ्रेंच फ्राइज तैयार किए जाने लगे। जॉर्ज क्रम और उनकी बहन केट विक्स, जिन्होंने 1860 में अपना एक रेस्तरां खोला था, उन्होंने आलू के चिप्स का मयार कायम किया और अपनी नई इजादात को पैक करके बेचना शुरू किया। न्यूयॉर्क सिटी में आलू के चिप्स जल्द ही लोगों के नाश्ते की पहली पसंद बन गए। दरअसना आलू के चिप्स, जो साराटोगा चिप्स के नाम से मशहूर है, उनको दूसरे बड़े रेस्तरानों और क्रूज़ बहरी जहाज़ों के बावर्ची खाने में दाखिल होने में ज़्यादा देर नहीं लगी और ये एक लजीज लज्जत के तौर पर अमरीका और यूरोप दोनों में फैलने लगी। जॉर्ज क्रम की हादसाती ईजाद आलू के चिप्स ने उन्हें 1889 में एक अखबार के जरिए अमेरिका का सबसे मशहूर शेफ करार देने के काबिल बना दिया। अमेरिकी खाने की तारीख में दिलचस्पी रखने वाले लोग क्रम के साथ साथ उसकी बहन केट विक्स को भी इस ईजाद के मेमारों में से एक समझते हैं। दर हकीकत बाद में शाया होने वाले कई मजामीन में मुख्तलिफ नामों को आलू के चिप्स के मूजिद का खिताब देने की कोशिश की गई। आलू के चिप्स, जिन्हें कई सालों से साराटोगा चिप्स कहा जाता था, तब से अब तक मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानब से लाखों पैकेजेस में तैयार किए जा चुके हैं और ख़ास तौर पर बच्चों और नौजवानों की तरफ से उसे मज़े से खाया जा रहा है। तमाम आज आलू के चिप्स जिनमें ज़्यादा चिकनाई और नमक होता है, इसके हवाले से बाज़ सख्त कवानीन तकरीबन हर मुल्क के फूड रेगुलेशंस में दाखिल हो चुके हैं। आलू के चिप्स, जिनका अब हर कोई मानता है कि ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और कल्बी अमराज का बायस बनता है, अलबत्ता इनका जायका हर किसी को भाता है, बशर्ते कि इनका मुनासिब और माकूल तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।